श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये प्राय प्रपन्न जनता प्रथमावगाह्यो मातुस्तनाविव शिशोरमृतायमानौ प्राप्तौ परस्परतुलामतुलान्तरौ ते श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्रदृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृ मुनिनाममदर्शितौ ते श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्रदृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृ मुनिनाममदर्शितौ ते श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये।